ये NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस है। अब आज की बाकी खबरें समाप्त फरमाइए। अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो खलीजी इत्तेहादियों की हिमायत बढ़ाने के लिए मशरक़ वुस्ता का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने जुमेरात को कहा कि वो सब आबनाए हुरमुज़ में टोल वसूल करने के ईरानी मंसूबे के मुखालिफ हैं और मुतनब्बह किया कि अमरीका इसे बर्दाश्त नहीं करेगा। रूबियो ने ये बात बहरीन में खलीज तआवुन कौंसिल के अरकान से मुलाकात के बाद कही। अमरीका और 6 खलीजी ममालिक ने मुश्तरका बयान जारी किया जिसमें इस आबनाए के इस्तेमाल के लिए तमाम किस्म की अदायगियों और इस आबी रास्ते पर कंट्रोल के दावों को मुस्तरद किया गया है। रूबियो ने कहा, मेरे लिए फीस और टोल एक ही चीज़ हैं। ठीक है, अगर आप किसी को वहां जाने के लिए पैसे दे रहे हैं तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप इसे फीस कहें या टोल या चंदा, ये टोल है। हम इसकी इसी तरह तारीफ करेंगे। ये बैनुल अक्वामी आबी रास्ता है। रूए ज़मीन पर कोई ऐसा मुल्क नहीं जो इस आबनाए से गुजरने के लिए पैसे देने की हिमायत करे। भारत में सोना तवील अरसे से दौलत की अलामत रहा है और सकाफत में रचा बसा हुआ है, लेकिन इस कीमती धात की परचून फरोख्त उस वक्त से कम हो गई जब हुकूमत ने दरामदी टैरिफ को 2 गुना से ज़्यादा कर दिया। भारत रुपए की कमज़ोर कदर के बाद मशरक़ वुस्ता में तनाज़ात की वजह से खाम तेल की कीमतों में इजाफे से निमटने के लिए जिदोजहद करता रहा है। मुल्क में गैर मुल्की करेंसी के ज़खायर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता माह लोगों से सोना खरीदना बंद करने की अपील की थी। हुकूमत ने इस पर दरामदी टैरिफ भी 6 से बढ़ाकर 15% कर दिया है। नई दिल्ली में जेवरात की एक दुकान के मालिक बिमल मेहता का कहना है कि ये सनद के लिए एक बड़ा धचका है। वो कहते हैं, हमारे पास एक दिन में औसतन

0: साल के इन दिनों में जापान भर की इबादत गाहों में मुनक्किद की जाती है। क्योटो में वाके कितानो तेम्मांगू इबादत गाह के इहाते में जुमेरात को दो रिंग लगाए गए। 25 जून का ये दिन सुगावारा नोमीचिजाने का यौम पैदाइश है। इस कदीम स्कॉलर को इल्म के देवता के तौर पर पूजा जाता है। 5 मीटर के बड़े रिंग को इबादत गाह के गेट पर नसब किया गया था। ज़ायरीन बारिश को बर्दाश्त करते हुए रिंग में दाखिल हुए। वस्ती जापान के मिए प्रीफेक्चर से ताल्लुक़ रखने वाली एक खातून ने कहा कि उसने चिनोवा में कदम रखने का अपना ख्वाब आखिरकार पूरा कर ही लिया। उसने मजीद कहा कि वो इस तजर्बे से बहुत मुतासर हुई हैं। ज़ायरीन मंगल तक इस रस्म में शिरकत कर सकते हैं।
1: और सामीन, आखिर में खास खबरों का खुलासा। जापान के मौसमियाती हुकाम ने मगरबी जापान के कुछ हिस्सों में लोगों पर जोर दिया है कि वो मूसलाधार बारिश के नतीजे में मुमकिना लैंड स्लाइडिंग के खिलाफ इजाफी एहतियात करें। जापानी वजीर आजम ताकायची सनाए अगले हफ्ते भारत के मुजवजा दौरे में शिमाल मशरकी रियासत आसाम के एक शहर की जगह दारुल हुकूमत नई दिल्ली जाएंगी। और मर्दों के फुटबॉल वर्ल्ड कप में जापान नॉकआउट मरहले में पहुंच गया है। इसके साथ ही NHK वर्ल्ड जापान की उर्दू सर्विस से खबरें खत्म हुईं।

0: सुरप सुरप की आवाज के साथ सोबा नूडल्स को मुंह में खींचते हैं। अब तो खैर मुझे आदत हो गई है, लेकिन शुरू में मुझे आवाज बहुत अजीब लगती थी।
1: जी, ये बात अक्सर गैर मुल्कियों को अजीब लगती है, लेकिन जापान में सोबा खाने का यही दुरुस्त अंदाज है। दरअसल इस तरह खींचने से नूडल्स के साथ कुछ हवा भी मुंह के अंदर दाखिल होती है, जिससे सोबा के जायके के साथ साथ इसकी खुशबू से भी ज्यादा लुत्फंदोज हुआ जा सकता है।
0: अच्छा, तो फिर अगली बार मैं भी इसी तरह खाने की कोशिश करूंगी।
1: मियाँ, जिस इलाके में गई थी वो इलाका यानी नागानो प्रीफेक्चर सोबा की काश्त के लिए इंतहाई मौजूद इलाका है। ये सतह समंदर से बुलंद ठंडा इलाका है। वहाँ कई सोबा रेस्तरान कदीम अंदाज के घरों में हैं, जिससे एक रिवायती सा तासुर पैदा होता है। बाज रेस्तरानों में करीबी देहातों में रहायश पजीर बुजुर्गों के हाथ से तैयार करदा सोबा नूडल्स इस्तेमाल किए जाते हैं, जबकि कई रेस्तरान शहरी इलाकों से वहाँ आने वाले अफराद चला रहे हैं। नूडल्स की तैयारी के लिए अज्जा और पानी का इंतखाब इंतहाई एहतियात के साथ किया जाता है। हर रेस्तरान का सोबा बनाने का अपना मुनफरद तरीका है। अगर आपको उस इलाके में जाने का मौका मिले तो मुख्तलिफ रेस्तरानों के सोबा से लुत्फ़ अंदोज़ होना एक अच्छा तजर्बा होगा।